0: ইংৰাজী 5 মিনিটত ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মনোজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने

0: बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। By-elections for 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam will be held today. The 5 assembly seats going to polls are Madhurandkam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattachavadi in Puducherry and Rejinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat going to polls is Nagaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidya Sagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by-election to a lone seat in West Bengal will be held on 16th of this month. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh from today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as the chief guest and confer degrees to trainee doctors. The President will also travel to Manali, where she will visit the Hidamba Temple and the Atal Tunnel Rohtang tomorrow. Security measures have been stepped up in hotel areas along major roads and in the vicinity of event venues. India and Switzerland have inked 5 agreements following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Pamelin in New Delhi yesterday. These agreements are on migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. Letter of intent between Department of Science and Technology and Swiss National Science Science Foundation and Implementation Arrangement for Cooperation in Innovation, Technology Transfer and Entrepreneurship.

0: घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक

0: विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माई ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबलाली इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विजिंजम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
2: बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुअनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत

0: भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। पोलिंग बिगिन्स फॉर बाई इलेक्शंस टू 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन तमिलनाडु, पुदुचेरी इन वेस्ट बंगाल एंड लोन लोकसभा सीट इन असम। बीजेपी अनाउंसेस नेम्स ऑफ 8 कैंडिडेट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉर राज्यसभा इलेक्शंस। President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. An immense cricket first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nogaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuran Thakam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Thattan Chowri assembly seat.

0: संग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
3: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
3: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
3: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
3: और इसके साथ हमें मिला है बेनी

0: पट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
1: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है।
0: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
1: जी।
0: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
1: पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर हैं लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
1: अजीत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
0: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है। और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
0: तो चलिए श्रोताओं, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
1: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
0: श्रोताओं, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
1: जी।
0: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
1: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
0: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ, लेकिन श्रोताओं, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
1: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
0: और इसी क्रम में श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
1: क्या हुआ था अजीत जी?
0: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे
1: जी।
0: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
1: जी, क्या छपा था?
0: अखबार में छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
1: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी?
0: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
1: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
0: आशुतोष, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन पांच क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ
1: जी।
0: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
1: वो कौन सी अजीत जी?
0: वो यह है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता

0: के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
1: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओं, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
0: तो श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
1: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
0: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके, और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
1: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
0: तो श्रोताओं, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, और हमारा सवाल है,
1: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे।
0: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है,
1: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी।
0: जी
1: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से,
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए,
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
5: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है।

0: कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
1: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
2: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
1: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
2: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
1: क्या कहा, क्या कहा?
2: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
1: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। देखो, बेचारा मरा पड़ा है।
0: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
2: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
3: नहीं, अरे ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
4: हाँ, देखते नहीं, ये तो मरा पड़ा है।
2: पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
4: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
0: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
2: अपने मित्र को देखो।
1: खोल दो अपनी आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
6: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
7: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
5: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
8: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
9: त्रेता युग में आरुणि उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
10: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थी। एक दिन
11: कहोड़,

0: मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारे शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
1: जो आज्ञा आचार्य।
0: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रखो।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोर कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोर।
6: ओह, पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
5: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है।

0: कौन विजयी होगा?
1: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
2: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
3: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
1: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
4: श्वेत केतु,
5: अष्टावक्र,
4: मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
5: हाँ,
4: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
5: कब चलना है?
4: बस अभी तुरंत।
1: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
6: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
4: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं। कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
2: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।
5: बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
7: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
4: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूं।
5: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
4: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
1: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
5: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
4: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
5: अत्यंत सुंदर।
2: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
5: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
4: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
1: दरबार में बैठे सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे।

0: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
1: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा।
2: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार आप क्यों हंस रहे हैं?
0: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है, परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
2: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
0: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है, आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना

जी हाँ श्रोताओं, मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ अभिनेता विनोद खन्ना के बारे में। पेशावर से मुंबई तक, विलेन से लेकर सुपरस्टार तक का सफर 6 अक्टूबर 1946 को, यानी कि आज ही के दिन 1946 को जन्मे विनोद खन्ना ने मेरा गांव, मेरा देश में अपना जलवा दिखाया। और विनोद खन्ना ने अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में दी।

विनोद खन्ना एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक थे। एक स्टाइल और फैशन आइकन के रूप में पहचाने गए थे और उन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा के इतिहास के महानतम सितारों में से एक माना जाता था। अब आइए सुनते हैं उनके द्वारा अभिनीत कार्यक्रम का ये अगला गीत।

2018 में विनोद खन्ना को मरणोपरांत 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भारत के सर्वोच्च सिनेमाई पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और विनोद खन्ना ने 1968 में फिल्म जगत में अभिनय शुरू किया। शुरुआत में सहायक और खलनायक की भूमिका निभाई। मेरे अपने, मेरे गांव, मेरे देश में मुख्य खलनायक की भूमिका उन्होंने निभाई और 1970 के दशक में भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में उभरे और खुद को एक अग्रणी एक्शन हीरो और बॉक्स ऑफिस स्टार के रूप में स्थापित किया और 1974 से 1982 तक उन्होंने कई हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का परागमाला लाइव कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: परागमाला। परागमाला।
2: परागमाला लाइव शुनिले আগ বঢ়ালে और सोना देवी
3: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণী।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব আৰু 12:05 আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन

0: संगठन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टांसावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबो ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: আইদেউ বুলনি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 1 বজাত হিন্দীত আৰু 1:05 ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट्स

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रूपये से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मधुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मधुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है।

0: आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
1: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
3: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश की सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है।

0: से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जला वितरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और बातों के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा। फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई इससे डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भैया आरती? मिठाई,
1: मिठाई आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार नहीं सबसे पहले शुरू होता है भाई चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल,
0: और कई बार तो होता ही है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें, कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज, भाई नहीं रख दो काम की चीज है।
1: बिल्कुल, और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारतीय भारत फैमिलीज होती हैं उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज़ हम उसको खराब नहीं करते। अगर कोई डिब्बा है तो उसको खाली, चलो उसको धो के रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: के साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या जंग लग के खराब हो गए, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव उसकी वजह से भी हम
1: उस चीज से क्या उसकी यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते हमें कोई पुराना फोटो मिल जाए बस
0: एल्बम
1: फिर क्या हो गया काम, फिर तो सफाई बंद यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला,
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पर डाल दिए जाते हैं। और घर से जब हम निकलते ना खरीदारी के लिए तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है, लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं ना कि लुभावने अवसर जो होते हैं, जो ऑफर होते हैं उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने हैं, फटकी चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो, और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मैं
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दीजिए,
0: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी जो दुकानें होती हैं, जो सामान होता है, इतना सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है तो मन ही नहीं करता वहां से हटें, अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें, तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते हैं, ये वाला झूमर भी ले लें, ये वाली कंदील भी ले लें, ये वाली लड़ भी ले लें, इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
1: और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का उत्साह तो ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं, है ना,
0: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि नए नए

0: डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना
1: बिल्कुल.
0: चाहिए ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते हैं दिखाने के लिए काम करता है,
1: हाँ
0: कुशन को उठाया यहां से वहां रख दिया,
1: बस.
0: ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी इस तरह से कर लेते
1: बिल्कुल, छोटी
0: हैं।
1: छोटी चीजें रखी. अच्छा ये चीज वहां है, वहां रख दी, देखो हम काम कर रहे हैं, दिख रहा है कि देखो हम काम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं. तो बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा.
0: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल.

0: सच में जो बहारों की जो रुत आ रही है यानी कि त्योहारों की रुत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है, और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहां सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार आ रहे हों और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पतिदेव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पतिदेव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं, तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई है।
1: बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वहीं विंडो शॉपिंग और तोल मोल

0: करना, ये सब अपना ही एक अलग मजा होता है इन चीजों का। बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से ही सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
1: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है। ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्योहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मजा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहां एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
0: बिल्कुल। एक मैं साथी हैं जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्योहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं। अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता नहीं देते थे लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियां लेती हैं। सफाई तो नजाकत से बयान करती ही हैं। मतलब चीजें हैं कि देखिए साफ सफाई घर में होनी चाहिए, बहुत सारी जो ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद
1: जी
0: रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो
1: बिल्कुल।
0: जाती
1: और
0: है।
1: इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी यही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में, और सीलन से कई बार चीजें
0: बारिश के
1: खराब हो
0: बाद
1: चुकी होती हैं बारिश के बाद में। फिर जब ये त्योहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ियों के, उसकी साफ सफाई हो जाती है, और पूरा घर कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकौड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसी के घर भी कई बार हम मिठाइयां पहुंचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और सबके साथ मिलकर ये खुशियां बांटना ये बात ही अलग होती है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी, सजावट, सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है। मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीजें मुझे मिलती नहीं है और श्रीमती जी को इससे बाहर रखना पड़ता है, और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीजों में मेरी जो चीजें वो मैं ही रखता हूँ, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है। मतलब त्योहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्योहार में सफाई होती है ना
1: जी
0: तो मेरे सामान कहाँ चले गए, वो मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना, बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया।
1: जी
0: तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर, अपने कमरे की सफाई, अपने सामान की सफाई खुद
1: खुद ही
0: करें,
1: कर ले।
0: ताकि
1: बिल्कुल,
0: हमें अपने जो हमें मालूम होगा कि हमने कहाँ रखा है वो
1: ये तो
0: सामान।
1: हम बात कर रहे हैं कि अपने घर की अपनी चीजों की सफाई कैसे रखनी है। इसके साथ छोटा सा एक काम हम ये भी कर लें कि मन को भी साफ करें। हम कई बार अपने मन में लोगों के प्रति जो भावनाएं रखते हैं उनको भी साफ कर सकते हैं, और घर को साफ करने के लिए भी नई चीजें खरीदी, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं अपने जो कई बार तकरार हो जाती है और मन में हम मुटाव लेकर बैठ जाते हैं और बुरी भावनाएं लेकर बैठ जाते हैं, उनकी भी सफाई करिए, और बिल्कुल सारी गिले शिकवे भुलाकर त्योहारों में उनसे भी गले मिलिए।
0: बिल्कुल। एक हमारे जो साथी हैं वो इसी बात को कहते हैं जो आपने कहा है कि सफाई, सजावट और खरीदारी त्योहारों की केवल बाहरी तैयारियां हैं, इनका असली उद्देश्य हमारे भीतर और प्रेम का संचार करना है। जब घर का हर कोना साफ और जगमगाता है, तब मन में भी जो खुशियां उसकी एक नई रोशनी जल उठती है।
1: बिल्कुल, घर भी सजाइए लेकिन रिश्तों में भी थोड़ी सी रोशनी लगाइए, क्योंकि त्योहार की असली रौनक बाजारों में नहीं या सजावट की दुकान में नहीं मिलती, वो तो अपनों के साथ मिलकर बैठती है। जब उनके साथ मिल बैठकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं। चलिए हम भी एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो हमारा प्रोग्राम भी अब आगे चल रहा है और हम बता दें कि आज बहुत एक खास दिन है जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस। और आज हम इस दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील विषय है और समाज को प्रेरित भी करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि जो इस तरह के मरीज होते हैं, इस तरह के रोग से पीड़ित होते हैं, उनको खास तौर पर हमारे प्रेम की बहुत ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल, और वैसे भी सेरेब्रल पॉलिसी है ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मुख्य रूप से शरीर की गतिविधियों, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित कर सकती है। ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी क्षति या असामान्य विकास के कारण होती है
0: और ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी है जिसमें मांसपेशियों का तनाव और अकड़न बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक और इसका प्रकार है जिसमें हाथ पैरों और हथेलियों के कुछ मामलों और चेहरों और जीभ को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जो मरीज है उनके लिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही ये एक तरीके की ऐसी भी होती है जिसमें कि मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे चलने में अस्थिरता आ सकती है और सटीक जो नियंत्रण होती है उसकी आवश्यकता वाले कामों में कठिनाई हो सकती है।
0: बिल्कुल, किसी को चलने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है आरती, तो किसी को बोलने या फिर रोजमर्रा के जो काम हैं उनमें किसी भी तरह का सहयोग लेना पड़ता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, किसी को थोड़ी कम होती हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की शारीरिक कठिनाई को देखकर हम उसके लिए अपनी सीमाएं तय कर देते हैं। यहीं से सोच बदलने की जरूरत है। कोई किसी से ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि ये कहे कि आपको ये काम करने के लिए किस तरह की मदद चाहिए।
0: और बस यही अंतर होता है सहानुभूति में और सम्मानजनक सहयोग में। तो हम सहानुभूति ना दिखाएं, उन्हें सम्मान दें, उनकी भावनाओं को भी समझें, और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल, और इस वर्ष के लिए इस दिवस का मुख्य विषय भी चुना गया है जो कि है यूनिक एंड यूनाइटेड, यानी कि अद्वितीय और एकजुट है, जो व्यक्तिगत आवाजों और सामूहिक एकता की ताकत पर जोर देता है।
0: तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो हम ले रहे थे अपने किस तरह से, श्वेता बता रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई करते हैं, सजावट करते हैं त्योहार
1: देखिए ना,
0: की।
1: संदेश आने बंद ही नहीं हो रहे
0: हाँ
1: हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इन सब तामझाम के बीच में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब काम खत्म करके पूरा परिवार पूरा जो परिवार है वो साथ में बैठता है और चाय की चुस्की, पुरानी यादें ताजा करी जाती हैं, रिश्तेदारों की खिंचाई की जाती है और हंसना हंसाना ही त्योहार को सच में त्योहार बनाता है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि गणपति पर हमारे यहाँ बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे किसी ने भेजे थे, और इन चॉकलेट के डब्बों में हमने मक्खन रख लिया। तो आपने सही कहा कि काम करते करते कई बार एक एल्बम भी मिल गई तो सफाई धरी की धरी रह जाती है, यानी कि हमारी जो बातें हैं उनसे हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे जो श्रोता है लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें और बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर भी विंडो शॉपिंग और तोल मोल करने का अपना ही अलग मजा है।
1: तो चलिए अब एक गाने सुनने का भी अलग मजा होता है, सुन
0: बिल्कुल।
1: लेते हैं गाना।

0: तो वही इस गीत के साथ में घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि सयोनारा कहने का
1: हम
0: वक्त
1: भी
0: आ गया है
1: सयोनारा कहते
0: और कल फिर आएंगे सखी सहेली लेकर ये वादा करते हुए
1: लेकिन कोई और और इसी के साथ में हमें अनुमति दीजिए यानी कि आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से, बचपन से जिसको सुनते आ रहा हूँ, आज वहाँ पर बैठा हूँ। मेरे सामने जुबेर भाई हैं जिनको मैं अक्सर प्रोग्रामिंग हेट के बारे में सुनता था, आज मैं उनको देख भी रहा हूँ। आप हैं, आपकी आवाज़ सुनता था। मेरे सारे अभी मतलब मैं थोड़ा सा खोया खोया हूँ क्योंकि एक साथ कई सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही हैं और मुझे पता नहीं मैं कौन सा शेयर करूं, कैसे बात करूं।
1: नहीं, आप दिल खोल के हर एक याद शेयर कीजिए, हम उसी के लिए है ताकि हमारे सुनने वालों तक आपके दिल की बातें पहुंचे, सबसे ज्यादा जरूरी। और आपके पसंदीदा गीत हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, वो भी आपको शेयर करने। और रेडियो में जैसे हम आए, विविध भारती से जुड़ी बहुत सारी यादें आपने शेयर की है हमारे साथ, तो विविध भारती किस तरह से आपकी जिंदगी से जुड़ा और उसकी कुछ यादें वो हमें जरूर बताएं, वहां से शुरुआत करते हैं।
2: बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने वाला हूँ और बचपन मेरे बड़े खूबसूरत रहे हैं, सबके होते हैं बहुत खूबसूरत, बस उसको याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो से मैं कैसे जुड़ा, हम इसकी बात करते हैं। पहले तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम लोग अगर कभी टीवी देखना भी होता था तो भाड़े पे बैटरी लेकर के आते थे।
1: अच्छा,
2: हाँ जी, तो 12 रुपये या 15 रुपये में भाड़े पे मिलता था 2-3 दिनों के लिए, तो उसमें हम सैटरडे, फ्राइडे और संडे को फिल्में आती थी। फ्राइडे को आई थिंक रात के 9:30 बजे से, फ्राइडे को, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से और संडे को शाम 4:30 बजे से आता था।
1: हाँ, 4 या 5 बजे।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो यही हमारा एक फिल्म देखने का साधन हुआ करता था। लेकिन पिताजी ने एक रेडियो 2 सेल का लेके आया था, उन्होंने, बच्चे ही थे और बाकी मेरे गांव के लोग जब रेडियो सुनते थे तो मुझे भी लगता था मुझे भी रेडियो चाहिए। और मैंने जब रेडियो लगाया और मुझे नहीं पता था, बस ऐसे ही रैंडम एक दिन विविध भारती आया, मुझे एग्जैक्ट वो एज तो नहीं पता, बट उस दिन से मुझे लत लग गई। और कमाल की बात ये बताऊं मैम आपको कि मेरे पिताजी अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना पहले मैंने पापा को एक रेडियो गिफ्ट किया है।
1: अच्छा,
2: हाँ जी,
1: क्या बात है।
2: क्योंकि अगर मेरे पिताजी अगर वो रेडियो नहीं दिए होते तो आज मैं अभिनेता नहीं होता, क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही मुझे अभिनेता बनना है ये ख्याल आया। और उसकी तैयारी कैसी की जाए, मुंबई कैसे जाया जाए, कहाँ से थिएटर की जाए, वो सब मुझे विविध भारती में जो आप लोग इंटरव्यू लेते थे, है ना, आज के फनकार हुए, चाहे आज के मेहमान हुए, ये सारे गेस्ट आते थे पिटारा में, तो वो सब सुन सुन के या फिर मुझे जो फ्राइडे को एक फिल्म के ऊपर आती थी बातें, लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे
1: जी जी,
2: तो वो सब सुन सुन के मैं अपने आप को तैयार किया। और पूरी जिंदगी अब तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में, एक अभिनेता के बारे में सोचता रहा।
1: आपका रिसर्च वर्क वहां से शुरू हो गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह से विविध भारती मेरे जिंदगी में आया। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, मैं कई बार लोगों से शेयर किया हूँ कि आज जो मेरा व्यक्तित्व है या फिर मैं जो चंदन हूँ, अगर 50% मेरे माँ बाप, मेरे आसपास का संस्कार अगर मेरे अंदर है तो 50% विविध भारती का भी है। विविध भारती ने मुझे बोलना सिखाया, विविध भारती ने कैसे मुंबई जाया जाए, अपने सपनों को कैसे साकार किया जाए और कैसे अपने सपनों के लिए लड़ा जाए, जूझा जाए
1: जी,
2: है ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना, क्योंकि एक

0: बाल्य मन में जिसको कुछ भी वो दुनिया देखा ही नहीं है, सिर्फ उसी छोटे से रेडियो सेट से वो पूरी दुनिया को देख रहा है, तो ये पूरा श्रेय मैं विविध भारती और रेडियो को देना
1: क्या
0: चाहता
1: बात
0: हूँ,
1: है, ये
0: है
1: हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि विविध भारती से लोग जुड़ते हैं और इतना ज्यादा उन पर असर, उनकी जिंदगी पर असर करती है विविध भारती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके
0: बिल्कुल,
1: लिए।
0: शुक्रिया।
1: बचपन की जैसे बात की आपने, तो गांव कैसा था, परिवार कैसा था, क्या उनको सही था कि आप अभिनय में आए,
0: हाँ जी,
1: क्या
0: हाँ
1: वो इस
0: जी,
1: चीज से खुश थे, या फिर जैसे कहते हैं ना गांव में आप रहे हैं उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी चीज, बचपन को जिया है शायद आपने, जैसे सही मानों में कहते हैं जिया है, तो उसकी कुछ यादें बताइए, कैसे थे आप बचपन में?
0: बिल्कुल। अरे वाह, एक तो जहां पे मतलब चूंकि मैं रेडियो बहुत सुनता था, रात्रि सेवा भी सुनता था, अगर मेरी आंखें खुल गई हों 2:30 बजे तो मैं चुपके से रेडियो ऑन करके और उसी पे कान रख के सो जाता था और गाने चल रहे होते थे। मुझे रेडियो से इस कदर मोहब्बत थी, तो जहां मेरे रेडियो सुनने से मेरे घर वाले को आपत्ति हुआ करता था, वहां अगर मैं ये कहूं कि मुझे सिनेमा में जाना है, मुंबई जाना है, तो ये बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं सुहाएगा, करेक्ट। तो मुझे याद है कि जब मैंने +2 किया था तो पिताजी से मेरा बहुत अच्छा मतलब मैं नहीं उनसे कंफर्टेबल रहता था, एक डर रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे,
1: अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे।
0: नहीं कभी भी नहीं, उन्होंने मुझे आज तक एक चाटा भी नहीं मारा,
1: अच्छा।
0: है ना। बट उनका ये था कि मुझे डर लगता था वो वर्दी से। अब हो सकता है ये फिल्मों का ही देन हो, चूंकि मैंने फिल्मों में पुलिस वाले को ऐसा ही देखा है।
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: बट मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी, बहुत प्यारे, बट मैंने कभी हमारी उस तरह से यारी दोस्ती नहीं हुई पापा के साथ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चंदन बोल रहा है कि जाएगा बम्बई, हीरो बनेगा।
1: अच्छा।
0: तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा फिल्म में भर्ती होगा, तो बहुत अजीब सा था घर का माहौल, और पहली बार लगा कि अरे यार ये लोग को पसंद नहीं है, शायद मुंबई ना जा पाऊँ मैं। बट फिर आप लोगों ने हौसला दिया, मतलब विविध भारती ने हौसला दिया कि देख सपना है अगर तो तुम्हें ही पूरा करना होगा,
1: और
0: कोई
1: सपनों की
0: और
1: नगरी में आना ही है।
0: बिल्कुल, और कोई और नहीं तुम्हारे सपनों के लिए कुछ, कोई क्यों ही करे,
1: जी।
0: तुम्हारा है तुम लड़ो।
1: बचपन में कैसे थे, नटखट थे,
0: अरे बहुत
1: किस तरह
0: ज्यादा,
1: के, आपने बचपन को जिया है जैसे,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: किस
0: जी
1: तरह से जिया है, वो गांव का जो परिवेश होता है, घर में किस तरह से थे भाई बहनों के बीच,
0: बिल्कुल
1: आप ज्यादा शरारती थे मेरे ख्याल से।
0: हाँ, मतलब शरारती तो था ही। कमाल की बात यह कि जहां मेरा घर है ना गांव में, मेरे घर के बगल में गंगा नदी बहती है,
1: अच्छा।
0: नदी से इसीलिए मैं बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ, और नदी के बगल में मेरा गांव घर, और वहां पे एक छोटा सा ही कस्बा है वो, जहां पे तीन तीन पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब तो एक भी नहीं है, सिंगल स्क्रीन,
1: अच्छा।
0: और बहुत प्यारा सा बहुत छोटा सा गांव, तीन पिक्चर हॉल थे फिर भी छोटा था वो। लेकिन कई बार
1: सही
0: मुझे
1: बात है
0: लगता है कि यार आप ना सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे होते हो
1: जी,
0: और सब कुछ लिखा हुआ होता है,
1: बिल्कुल।
0: आप यकीन माने मैं सिर्फ उस रास्ते पे चलता रहा और चीजें अपनी आप होती चली गई। कई बार मुझे लगता है कि सच में मेरे साथ जादू हुआ है। एक लड़का जिस गांव में सिर्फ लोग पेट भरने के लिए सोचते हैं कि कहीं से नौकरी हो जाए 2 रुपए की और अपना जीवन यापन हम अच्छे से गुजार पाए, वहां एक लड़का सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है मुंबई। बिहार में सभी घर में सभी माँ चाहते हैं कि छोटी सी ही नौकरी, हमारे बच्चे को एक नौकरी होनी चाहिए। और मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी 5 भाई थे और उनमें से 3 भाई इंडियन आर्मी में थे, पिताजी बिहार पुलिस में, चाचा लोग कोई असम राइफल्स में है, कोई BSF में है, वहां एक लड़का, अच्छा और भी कई सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, बट
1: अच्छा।
0: मैं सोचा कि नहीं मुझे तो जाना है मुंबई। तो ये थोड़ा सा मेरे घर वाले के लिए मुश्किल था। कई बार मुझे ये लगता है थोड़ा सा फिलोसफी वाली बातें हो जाएंगी, बट ये जो हैप्पीनेस है मेरे लिए ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से इंस्टॉल होकर के आया है मेरे पास,
1: बिल्कुल।
0: मैं बेवजह खुश हो जाता हूं कई बार।
1: वो खुशी कहीं ना कहीं अंदर ही है, जिसे हम
0: हाँ
1: बाहर तलाशते हैं।
0: जी, और यही वजह है कि मुंबई भी मुझे लगा कि अरे ये तो हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही बना है भाई, मैं तो जाऊंगा मुझे काम मिलेगा,
1: बिल्कुल,
0: यही एटीट्यूड था मुझे। कभी भी
1: क्या बात
0: शक
1: है।
0: नहीं हुआ कि अरे भाई ये लड़का से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।
1: कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
0: हाँ
1: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। कौन
0: वाह,
1: सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: प्यारा गीत है, गाने का बोल है जब हम जवां होंगे जाने कहां
1: क्या
0: होंगे।
1: बात है, क्या बात है। बेताब फिल्म का ये गीत हम सुनवा अपने सुनने वालों को।

0: बात चली है चंदन रॉय से, तो
1: अच्छा
0: बचपन की बातें तो बहुत सी आपने की है, अब पढ़ाई से आपका कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था?
1: हाँ जी, देखिए पढ़ाई में तो थोड़ा सा मैं मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ता था लेकिन हो ही नहीं पाता था मेरे से। मैं भूल जाता था चीजें, जैसे तारे जमी पे जो प्रॉब्लम था ना उस बच्चे का, कई बार मुझे लगता कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था।
0: अच्छा
1: हाँ, आप मुझे बोल दो कुछ लिखने के लिए ना, तो कभी मैं हर्षी लिख दूं, कभी दीर्घी लिख दूं, किसी हिंदी में भी, तो था ये, मैं चीजें भूल जाता था और टीचर भी बहुत पीटते थे कई बार। तो मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई से दूरी हो गई कि ये मेरे को पीटते भी हैं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, मुझे SST बहुत अच्छा लगता था, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ये सारे सब्जेक्ट सही लगते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की, अरे नहीं नहीं नहीं ये आर्ट ले लेगा तो क्या ही करेगा जीवन में। दो तीन आंटी भी थी, वो लोग भी कि नहीं नहीं नहीं नहीं इसको साइंस साइंस लिवाओ।
0: और कहीं ना कहीं आपका सपना अभिनय में आने का था,
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: उस
1: जी
0: तरफ रुझान शुरू से था।
1: हाँ, और जब भी कोई इस तरह की बातें करता था ना कि मेरे जो गोल है, एम है, उससे हटके बातें होती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे ना वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना कहीं और है, वो मुझे कोई और बुला रहा है, तो मुझे क्यों इस तरफ लेके करके आ रहे हो, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो हमेशा मतलब 10th में भी बहुत ही कम नंबर आया, 12th में भी यही हाल था, मतलब किस तरह मैं पास हो गया।
0: अच्छा
1: अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। हाँ, बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने मास कॉम ले लिया था।
0: ये आपने पटना से किया
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी।
1: तो मास कॉम इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि अरे लाइट रहेगा, कैमरा रहेगा, माइक रहेगा, तो मैं थोड़ा सा ना सिनेमा के आसपास रहूंगा और थोड़ा जागरूक भी रहूंगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है
0: बिल्कुल
1: ये सब मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने मास कॉम किया। और हाँ, फिर मेरे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए, मतलब बहुत अच्छे नहीं, जिसको हमेशा 52-53 आ रहा उसके लिए।
0: लेकिन आपके पसंद के विषय अब आ गए थे, आपका पसंद कहीं ना कहीं
1: हाँ
0: आ गया
1: जी
0: था,
1: हाँ जी हाँ
0: इसीलिए
1: जी हाँ
0: वो
1: जी,
0: फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं ये अब महसूस करता हूं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है एक अभिनेता के लिए। तो
0: अभी आपके पसंद का दूसरा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं,
1: देखो,
0: सुनेंगे?
1: आज तो मैं सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि विविध भारती मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैं वही सब पुरानी चीजें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं दिनों को याद करता रहूंगा और उन्हीं दिनों के गाने भी सुनता रहूंगा। तो अभी मैं अपने पसंद का गाना बताना चाहता हूँ, अंदाज फिल्म का। अंदाज का कोई भी गाना चलेगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, जो अक्षय कुमार और प्रियंका और लारा दत्ता की फिल्म थी।
0: जी।
1: अरब

0: हम आते हैं इस सवाल पे कि आपने अपना नामकरण खुद से कर लिया था, आपने अपना नाम बदल दिया
1: हाँ जी,
0: है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, वो जरा बताइए कि क्यों बदला, कैसे बदला, राय की जगह रॉय, ये कहां से
1: ये
0: आया?
1: सवाल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका जवाब विविध भारती के पास है,
0: जी
1: क्योंकि लोकेंद्र शर्मा लेकर के आते थे बायोस्कोप की बातें। तो एक बार उन्होंने 2 बीघा जमीन सुनाया, और वो इस तरह से सुनाते थे पूरी कहानी को, फिल्म और फिल्म के पीछे की बातें, तो वो दिल को भा जाती थी। तो हमने डिसाइड किया था कि चंदन राय से मैं चंदन रॉय हो जाऊंगा, सिर्फ बिमल रॉय की वजह से। मुझे वो इतना कमाल लगा, 2 बीघा जमीन, तो इसकी ये कहानी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बचपन की बातें की थी, तो मैं ना एक छोटी सी कहानी याद करना चाहता हूँ, मैं
0: बिल्कुल
1: भूल ना जाऊं। मेरे यहाँ ना, वही जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ 3 पिक्चर हॉल था, तो एक शिवम टाकीज, अमरदीप और गंगा हुआ करता था। तो रामनवमी का समय, और मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देख रखी थी, ये दिल आशिकाना।
0: बहुत कमाल।
1: तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो भाई चलना है फिल्म देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख चुका हूँ। बोले नहीं, फिर से चलते हैं। और रामनवमी का समय था, पूरे शहर में जुलूस निकला हुआ था, और इवनिंग शो, तो चला गया। बट वो शो का टाइम था 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे रात तक। 10 बज गए, 11 बज गए, घर के लोग मुझे ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया। माँ ढूंढ
0: जी
1: रही है कि भाई 1 2 3 चौथा बच्चा कहाँ है मेरा। मुझे याद है कि घर पे ना एक रिक्शा आया, उसमें वो एक बांधा गया चोंगा कि भाई एक लड़का खो गया है, इस रंग का है, शर्ट ये पहना है, नाम ये है, कहीं
0: अच्छा
1: मिले तो बता देना। तो इस तरह के घर पे ना वो शुरू हो गया था। और मैं उधर ये दिल आशिकाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, इस तरह गाने चल रहे हैं, और मैं एकदम सब कुछ भूल के फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म जब खत्म हुई, और तब तक 12 12:30 हो चुके थे, और मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे एक चाचा जी फौज में हैं, तो वो ढूंढ रहे थे बाइक्स पूरे महनार में। संयोग से पटेल चौक पे मैं मिल गया उनको। मेरे सारे दोस्त तो भाग गए, और उन्होंने मुझे पकड़ के जो पीटा बीच चौक पे, फौजी आदमी अपना जूता खोला और जूते से पीटना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे, बहुत पीटा। फिर उसके बाद बाइक पे बिठाया, फिर घर लेके आए। मुझे लगे यार घर पे भी सब पीटेंगे अब मुझे। पूरे घर के जो भी लोग थे सब बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि भाई लड़का गुम हो गया, नहीं मिल रहा है। फिर मेरी माँ जैसे मैं गया, हाथ पकड़ी घर में लेके चली गई। बट उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद ऐसा मत करना। हालांकि मैं मानने वाला कहाँ था, 1 2 महीने के बाद फिर से क्योंकि पिक्चर के बिना मैं रह नहीं सकता था,
0: जी,
1: मतलब मुझे एक अजीब सी लत लग गई थी फिल्मों की।
0: रच बस गया था सिनेमा।
1: हाँ जी, तो ये बचपन की कहानी है। ये कहानियां आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही सब शरारतें मुझे याद आती हैं
0: जी
1: आज,
0: जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: और यहीं से समझ में आता है कितना पैशन था आपको माया नगरी में आने का, सिनेमा में अपना नाम कमाने का, फिल्म जगत में अपना नाम कमाने का।
1: बिल्कुल, आप यकीन माने कि जब मैं विविध भारती सुनता था, तो मुझे यह था कि यार जब मैं मुंबई जाऊंगा और एक दिन जब मेरा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के सवाल किए जाएंगे। तो मैंने ना 1 से 12 15 सवाल तैयार करके रखा था, यही सब सवाल मुझसे भी पूछे जाएंगे, और इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
0: वो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं।
1: यस, और आप यकीन माने कि मैंने बचपन में जो जो सोचा था ना, ईश्वर ने सब कुछ वही किया है, मैं उन्हीं रास्तों से गुजरा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये सच में हकीकत है या सपने में हूं मैं। ये बहुत मुश्किल है, जो आप सोचो वो हो जाए, और बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।
0: सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे।
1: बिल्कुल, कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक
0: बिल्कुल
1: पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो, खरीद लेंगे दूसरा
0: ये
1: चादर।
0: उभरते हुए कलाकारों के लिए ये एक मिसाल है, ये कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करता है कि डरे
1: बिल्कुल,
0: नहीं सपने देखने से,
1: हाँ
0: और जो चाहेंगे वो होगा,
1: हो जाएगा,
0: बस वो मेहनत की जरूरत है
1: एक ही
0: और
1: जिंदगी मिली है
0: शिद्दत।
1: ना। बिल्कुल मैम, एक ही जिंदगी मिली है, अपने हिसाब से जिएंगे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप एक समय के बाद ये तो कहेंगे कि जो मैं चाहता था वो हुआ। सफलता, असफलता तो बहुत ही सब्जेक्टिव
0: जी,
1: है ना,
0: मन की
1: और
0: खुशी।
1: मन की खुशी है। कभी ये नहीं, जैसे कई बार

0: लगता है कि अरे ये हासिल कर लिया तो मैं सफल हो जाऊंगा,
1: जी
0: नहीं, वहां भी पूरा ब्लैंक ही है, ये कुछ भी नहीं है। ये जो एक मुझे कई बार लगता है ना कि मरीचिका, मरीचिका जो होता है ना वो धूप में जो दिखता है रेगिस्तान में, यही सफलता है, होता कुछ नहीं है वहां। लोगों
1: बिल्कुल
0: को लगता है अरे सफल, कुछ नहीं है सफलता। और मैं मुंबई में सफल असफल नाम शोहरत पैसा इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूं। मुझे जब हेयर मेकअप करके स्क्रिप्ट अच्छे से समझ के मैं कैमरे के सामने होता हूं माइक लगा के, वो खुशी मैं क्या बताऊं आपको। मैं इसके लिए मुंबई में हूं, ना कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ये सफल होना, मुझे ये बंगला गाड़ी घोड़ा। अरे नहीं भाई, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं सेट पे होता हूं, एक कमाल की एनर्जी में होता हूं, ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।
1: वो एक्शन और कट के बीच का जो लम्हा
0: ओ
1: है,
0: हो,
1: कहीं आपने कही है बात, एक्शन और कट के
0: बिल्कुल
1: बीच का
0: बिल्कुल
1: लम्हा।
0: वही जिंदगी है मेरे लिए। वो जब एक्शन से पहले दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है, जैसे ही एक्शन होता है तो बेसिकली वो एक्शन हमारे लिए कट होता है कि पूरी दुनिया से हमें कट जाना है, और मैं और मेरा को एक्टर बस, जैसे ही कट होता है वो मेरे लिए एक्शन होता है बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए। तो जो एक्शन और कट में जो हम जी लेते हैं ना, वो वक्त बेसिकली जब आप ध्यान में होते हो, प्राणायाम करते हो, तो वही तो है ना, आप सबसे कट के उस मोमेंट में, उस शून्य में, उस
1: जी,
0: बिंदु पे रहते हो। अब इन्हें भी
1: मेडिटेशन,
0: बिल्कुल,
1: ध्यान।
0: मैं भी इसी तरह से उसको देखता हूं और समझता हूं कि उस लम्हे को जी लूं, उस पल को जी लूं। कई बार होता है, कई बार हम चूक जाते हैं, हर बार उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश होती है, उसके आसपास भी चला जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फीलिंग को जीने के लिए हम बार बार अभिनय करते हैं और पूरी जिंदगी यही करना चाहते हैं।
1: यहां पर जानना चाहेंगे आपके पसंद का एक और नगमा।
0: ये दिल आशिकाना का जो टाइटल सॉन्ग है,

0: हम बातचीत कर रहे हैं दिल से यहाँ चंदन जी से, और हम पहुंचे थे बचपन को जीते हुए कॉलेज तक, पटना तक पहुंचे थे। तो वहां थिएटर से कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से थिएटर वहीं से शुरुआत हुई आपकी कॉलेज में।
1: चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे यहाँ छठ, दिवाली, दशहरा ये सब बहुत धूमधाम से होता है। तो मेरे गांव में सब लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्ले लिखते थे और उसको खेलते थे। नाटक खेला जाता था हमारे यहाँ। ये बाद में समझ में आया मुझे कि नाटक ना लोड लेने की चीज़ नहीं है, इसको खेलना है, नाटक खेलना है, पात्र को खेलना है, उसको एंजॉय करना है। तो हमारे गांव में खुद से धनंजय चाचा जी थे, वो नाटक लिखते थे और वही पुरानी फिल्मों वाली नाटक, सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक, कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखते थे वो।
0: जी।
1: मैं उसमें बाल्य कलाकार के रूप में काम करता था और पूरी पूरी रात स्वेटर मफलर डाल के मंच के सबसे आगे बैठा रहता था। पूरा नाटक सुबह के 6-7 बजे तक बैठ के देखते रहता था। तो उसी समय से मुझे लगा कि मुझे भी यही करना है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो बाल कलाकार के रूप में मैंने नाटक शुरू किया
0: जी
1: करना प्ले। फिर स्कूल में एनुअल डे पे या इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे कुछ कुछ होता था, लेकिन एक बढ़िया से प्ले थिएटर थोड़ा गंभीरता के साथ वो पटना कॉलेज में जब आया तो शुरू किया। वहाँ पे एक कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, तो इन दोनों जगह पे हम प्ले करते थे और ज़्यादातर हम वहाँ पे स्ट्रीट प्ले किया करते थे,
0: अच्छा,
1: गांधी गांधी मैदान में।
0: नुक्कड़ नाटक जिसे
1: हाँ
0: कहते
1: जी,
0: हैं।
1: गांधी मैदान में सरस मेला और पुस्तक मेला लगता था, उसमें करते थे। और हालांकि मुझे थिएटर से एक समय पे मैं बहुत क्लियर था कि भाई थिएटर लंबे टाइम तक तो मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि थिएटर कर्मी की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी नहीं है। कई बार वो वापस जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। तो मुझे लगता है यार ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा मैं। बहुत अच्छा रंगकर्मी, बहुत शिद्दत के साथ वो काम करते थे, लेकिन मुझे ना डर लगता था कि यार ऐसी मतलब ऐसा कलाकार नहीं बनना मुझे। करेक्ट। तो मुझे ये था कि थिएटर में सिर्फ इसलिए करूं कि क्राफ्ट सीख लूं, तरीका सीख लूं, उसके बाद मैं मुंबई चला जाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था।

0: अगर आप किसी थिएटर में जाएं और उसको बोलें कि भाई मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, तो वो लोग बहुत बुरा मानते थे। उनको ये लग रहा था कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हमें थिएटर से क्रांति करना है, बदलाव करना है। और मैं अपने मकसद में बहुत मेरा सॉर्टेड था कि भाई मुझे तो मुंबई जाना है, मुझे आप सिखाओ कैसे मंच पे रहना है, कैसे ऑडियंस रहना है, कैसे मतलब बेसिकली करेक्टर को कैसे हम उसके आसपास जा सकें,
1: जी
0: है ना, करेक्टर कैसे अपने अंदर ला सकें, ये सीखना था मुझे। तो फिर कॉलेज खत्म करने के बाद पटना मैं चला गया IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पर JNU में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, बहरूप आर्ट, उसके साथ जुड़ा। उसके साथ भी मैंने कई खूबसूरत प्ले किए, साथ ही साथ मैंने NSD रिपेटरी में भी कुछ काम किया। आसिफ अली हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी वो NSD में फैकल्टी हैं, उनके साथ भी कई सारे प्ले। तो इस तरह से मेरा थिएटर का शुरू रहा। मतलब थिएटर ऐसा था कि एक ऐसी लत थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था। हालांकि जब से मैं मुंबई आया तो थिएटर नहीं कर पाया, लेकिन जब तक मैं दिल्ली में था थिएटर कभी छूटा नहीं। कई बार चूंकि मैं दैनिक जागरण में जॉब करता था,
1: बिल्कुल
0: तो अगर प्ले का टाइम दोपहर का दे दिया रिहर्सल का, तो आप तो सब नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पूरे दिन आपका ऑफिस में गुजरता था।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने मैनेजर को ऐसे हाथ में जो कच्चा पट्टी होता है ना बांध के मैंने भेज दिया था फोटो कि भाई मेरा हाथ टूट गया है तो मैं टाइपिंग तो अब कैसे कर पाऊंगा, है ना, और इसलिए मुझे 1 महीने की छुट्टी अब तो नहीं आ पाऊंगा। और
1: अच्छा
0: मैं उस 1 महीने में राग दरबारी, एक प्ले था श्री लाल शुक्ल ने लिखा है, तो वो प्ले मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहा, है ना। मेरे लिए थिएटर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय।
1: तो पत्रकारिता की जॉब जो आपने की
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: नौकरी की है, वो भी इसीलिए की ताकि आप मुंबई आ सके, है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: बिल्कुल
1: तो वो वहां पर कैसे आप पत्रकारिता में कैसे जुड़े
0: हाँ
1: और उसके
0: जी।
1: बाद वहां से रास्ता मुंबई के लिए कैसे बनाया?
0: तो ये था कि मुझे मुंबई जाना है, जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे अपने पास तो है नहीं, घर वाले से मांग नहीं सकता क्योंकि आप 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हो, मम्मी पापा की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
1: बिल्कुल
0: मेरे अलावा। और ये थोड़ा बड़ा अजीब भी लगेगा कि मुंबई मुझे जाना है तो मैं क्यों ही पैसा किसी से मांगू। तो मैंने किया जॉब दैनिक जागरण में, IIMC में जाने का एक ही था उद्देश्य कि मिल जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा, और हो भी गया दैनिक जागरण में। और वहां पर मुझे 11,800 रुपया मुझे मिलता था, और हालांकि कभी 11,800 शायद एक दो बार ही मिला होगा क्योंकि कई बार छुट्टी मैं ले ही लेता था प्ले के सिलसिले में, तो कभी मेरे पूरे पैसे नहीं आते थे, है ना। और जैसे ही मुझे लगा कि कुछ पैसे 3-4 महीने के लिए हो गए मुंबई में जाने के लिए, तो वैसे मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं आ गया मुंबई। गरीब रथ पकड़ा था निजामुद्दीन से, 7 अक्टूबर 2017 को आ गया था मैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी
1: बिल्कुल डेट याद है
0: हाँ जी,
1: एकदम।
0: उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
1: और वो जो कदम आपके पड़े थे मुंबई में, उसकी
0: हाँ
1: याद, वो जो पहला दिन था,
0: हाँ
1: उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए कि बस अब मैं मुंबई आ गया हूं, तो कैसा रहा? पहले से प्लान करके आए थे कहाँ रहना है, किस तरह से वो दिन गुजरा, क्या प्लानिंग थी? अगर उस पहले दिन को याद करते आप, मुंबई के पहले दिन को।
0: पहले दिन तो ये था कि एक ऐसा लड़का जो इस महानगर में आकर के एकदम जैसे होता है ना कोई बदहवास गुमसुम सा लड़का किसी चौराहे पे खड़ा है, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, अफरा तफरी मचा हुआ है, उस तरह से मैं महसूस करता हूँ अभी खुद को। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कुछ भी आइडिया नहीं था। आज मतलब 8-9 साल पहले की बात है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो क्या हिम्मत था उस लड़के में। आज का चंदन तो नहीं आता, है ना,
1: जी
0: 50 चीज़ें सोचता। उस समय कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे लगा कि क्या होगा, बुरी से बुरी चीज़ों के लिए मैं तैयार था। मुंबई आया और बांद्रा रेलवे स्टेशन वहाँ उतरा, और सबसे पहले मतलब थोड़ा सा ये था कि सब लोग चले जाएं, इस धरती पे पहली बार आया हूँ तो एक बार उसको थोड़ा सा नमन कर लूँ, प्रणाम कर लूँ।
1: अच्छा
0: तो मेरे बॉगी में जितने भी लोग थे वो सब उतर गए। उसके बाद जब देखा कि सब लोग उतर गए हैं, फिर मैं चुपके से अपना इधर रुमाल नीचे गिराया ताकि कोई देख न ले कि ये क्या कर रहा। फिर रुमाल के बहाने अच्छे से उस धरती को प्रणाम किया कि अब तो आ गया हूँ, जो होगा अब आपके हवाले, आ गया हूँ तो रख लेना अपने पास, वापस
1: बिल्कुल
0: जाने मत देना। और मन में ये भी विश्वास था कि आया हूँ तो अब सिर्फ मेरी खबर जाएगी, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। तो बस फिर उसके

0: वहाँ से शुरू हो गया। रोज सुबह उठ के वही सत्तू पी के चावल दाल खा के निकल जाता था ऑडिशन के लिए। और ये था कि अगर इस महीने काम नहीं लिया
1: जी
0: तो फिर अगले महीने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर महीने और हर दिन ये सोच के निकलता था कि आज मुझे एक दिन का भी काम मुझे ले लेना है। और उस समय तो टीवी में वो क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स, सावधान इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। तो मैं कहीं चोर बन जाता, कभी पुलिस बन जाता, कभी ड्राइवर बन जाता, कभी नौकर बन जाता। तो एक दो दिन, 3 दिन अगर महीने में मुझे काम मिल भी गया तो उससे मेरे महीने भर का गुजारा हो जाता था। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया था मेरा।
1: और कहीं आपने कहा है कि वो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: स्ट्रगल नहीं था वो काम करना या ऑडिशंस की तलाश करना, वो कहीं ना कहीं मजेदार था आपके लिए
0: मजेदार तो
1: ये
0: बिल्कुल
1: जीवन,
0: था, बिल्कुल था।
1: है
0: वो
1: ना? उसको आप स्ट्रगल की तरह नहीं
0: कभी भी
1: लेते?
0: नहीं देखा। मुझे ये लगता है कि अगर वो दिन नहीं होते मेरी जिंदगी में
1: जी
0: तो मैं आज जितनी मजबूती के साथ आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, या मुंबई में हूं, या कभी ऑडिशन पे या कहीं सेट पे जाता हूं,
1: जी
0: ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता।
1: जी
0: तो वो दिन बहुत जरूरी थे, वो
1: बिल्कुल
0: अनुभव बहुत जरूरी था। तभी तो आज जब चीजें मुझे मिलती हैं तो मैं बहुत ज्यादा उड़ता नहीं हूं, उछलता नहीं हूं, क्योंकि मैंने वैसे दिन भी देखे हैं कि सच में मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं रघुवीर सर के यहाँ चला जाता था
1: अच्छा
0: क्योंकि वहां भरपेट अच्छा खाना मुझे मिल जाए,
1: जी
0: है ना। और जाता क्या था, एक दो दिन रुक ही जाता था मैं वहां
1: ओके
0: कि 2-3 दिन में जितना भरपेट खा लूं ताकि फिर से मैं वापस जब रामनगर वर्सोवा में जाऊं तो मेरे पास ताकत हो ऑडिशन के लिए, पैदल चलने के लिए। मैं पैदल बहुत चलता था,
1: जी
0: वर्सोवा विलेज से निकलता था यारी रोड होते हुए रामनगर, फिर वहां से 7 बंगला होते हुए, 4 बंगला सिग्नल के पास भी महाड़ा में कुछ ऑडिशन होते थे, वहां से होते हुए फिर इन्फिनिटी या फिर उधर यशराज लेन होते हुए शशि सुमित, ये सब मैं चक्कर लगाया करता था। और
1: अच्छा
0: सब पैदल, क्योंकि ऑटो के पैसे बड़े महंगे मेरे लिए हो जाते थे, तो
1: बिल्कुल
0: मैं पैदल ही निकलता। कहीं पसीने से तर बतर हो गया तो रिसेप्शन पे 5-10 मिनट रुक के पसीने सुखा के अच्छे से उनसे थोड़ा पानी पी करके फिर मैं ऑडिशन देता था। और ये बदस्तूर चलता रहा। कमाल की बात यह है कि मेरे जूते बड़े गंदे हो गए थे, पुराने थे। अच्छा, मैं ये सब बात सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि
1: नहीं
0: ये चीजें मैंने देखा है, भोगा
1: जी
0: है, मेरे आसपास वाले सब जानते हैं,
1: जी
0: इसलिए ये सब चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूं कि एक बार मेरे जूते बड़े गंदे थे, बहुत पुराने हो गए थे।
1: अच्छा
0: तो मैं एक गया जूता लेने के लिए, अंधेरी स्टेशन के सामने एक शोरूम था उसमें।
1: अच्छा
0: तो मैंने दुकानदार को बोला कि एक ऐसा जूता दो जो फटे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत पैदल चलना होता है। मैं रोज 12 से 15 20 किलोमीटर चलता था ऑडिशन के लिए। तो और ऐसा दो कि वो ऑलरेडी गंदा ही दिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो एक भूरा कलर का जूता मैंने पसंद किया, उसमें
1: अच्छा
0: सोल वगैरह कुछ नहीं था। तो वो जूता मैंने लिए और वही पहन करके पूरा ऑडिशन घूमते रहता था मैं।
1: अच्छा
0: तो इस तरह की दीवानगी और पागलपन था। और एक बार रघुवीर सर की जो मैडम है, रोशनी मैम, उन्होंने देखा कि भाई तेरे जूते बड़े अजीब से हैं यार, तो उन्होंने रघुवीर सर के 2-3 जूते मुझे दिए जो पुराने, मतलब जो नहीं पहनते थे वो।
1: अच्छा
0: तो उन्होंने मुझे 2 जूते दिए थे, तो वही 2 जूते फिर समझिए कि बहुत काम आया। फिर 1-1.5 साल तक वही जूते पहन पहन के मैं ऑडिशन देने के लिए जाता था। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं आज यहां बैठा हूं ना तो सिर्फ इसमें मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मदद है,
1: आशीर्वाद है
0: आशीर्वाद है। अगर वो
1: बिल्कुल।
0: लोग नहीं साथ में होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
1: चलिए यहां सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप?
0: तो विविध भारती पे जब आप पहले हेलो फरमाइश वगैरह सुनते थे ना तो एक गाने का बहुत ज्यादा फरमाइश आता था। तो वो गाना आज भी मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो है मोहरा फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने कहा था ना मैं
1: बिल्कुल
0: सारे बचपन के सारे गाने लिख
1: बिल्कुल
0: के
1: सुनवाते हैं
0: हाँ
1: गीत।
0: जी।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक रात एक बात लिखूंगी, तेरा नाम साफ साफ लिखूंगी। रोशन चांद ठंडी हवा लिखूंगी, तुझको अपने साथ लिखूंगी। तेरे हाथ में अपना हाथ लिखूंगी, हकीकत में तो तू मिला नहीं हमको। तो अपनी किताबे मोहब्बत में एक मुलाकात लिखूंगी। तू मेरा ना हो सका क्यों, ये सवाल लिखूंगी। तेरे दिल में ना हम समा पाए तो कोई बात नहीं, और हम बस तेरे हैं ये बात लिखूंगी। हर कोई पढ़ सके इतना साफ साफ लिखूंगी। एक रात मैं ये बात लिख दूंगी।

जानते हैं वो, फिर भी अनजान बनते हैं। पूछते हैं हमसे कि आपकी पसंद क्या है, खुद जवाब होकर हमसे सवाल करते हैं। सुनो तुम, खुशबू की तरह मेरी हर सांस में अपना प्यार बसाने का वादा करो। रंग जित

अपने तुम्हारी मोहब्बत के हैं मेरे दिल में सजाने का वादा करो। सिर्फ लफ्जों से इकरार होता नहीं, यक तरफा प्यार होता नहीं। मैं तुम्हें याद रखने की कसम उठाऊं, तुम मुझे ना भुलाने का वादा करो।

की हर धड़कन आपका नाम सुनाती है। आपसे इश्क है बेहद और बेहिसाब, ये बात मेरी खामोशी सुनाती है। एक तुम ही को खुदा से मांगा है, जब भी मांगी कोई दुआ पास आओ, ये इल्तिजा सुन लो। प्यार है तुमसे बेपना सुन लो, इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे, तुम हो चाहत की इंतहा सुन लो। इश्क भी तुमसे प्यार भी तुमसे, मेरे इंतजार की राहत मेरे दिल की चाहत हो तुम, आंखों से छलकता जाम हो तुम, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम, सिर्फ तुम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मसर्रतें तेरे नाम, मेरे हम कदम, मेरे हम नशी, ये रफ़्तारें तेरे नाम। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आईना, कभी अक्स तू, मेरे हम नवा, मेरी ख्वाहिशें।

मेरी मोहब्बतें तेरे नाम, कभी ये हंसी कभी ये नमी, कभी रंजिशें कभी कुर्बतें, मेरी जिंदगी की ये सभी हसीन इबारतें।

0: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में

0: प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज MT ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
1: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। भारत ने कल काला सागर में वाणिज्यिक मालवाहक जहाज एमवी रोयार्ड मामा 2 पर हुए हमले की भी निंदा की है। चालक दल के सदस्यों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की।
1: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा। बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस होलजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर मैच में डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे

0: परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव।

0: भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
1: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई है।
2: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
0: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
3: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

0: विचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hulson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of five-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
2: एक integrated transport and logistics authority का निर्माण किया जाएगा।
1: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
3: ₹10,000 crore MSME growth fund will be established to provide long-term equity capital to MSMEs with strong growth potential. The fund will be operated with the support of the Ministry of MSME and the Ministry of Finance and will be professionally managed to ensure effective allocation of capital. The fund will place a strong emphasis on manufacturing-focused MSMEs, with nearly half of its corpus expected to be directed towards the manufacturing sector. This focus aims to support MSMEs in leveraging the significant growth opportunities emerging in the sector.
2: Manufacturing se related MSMEs jinke liye bahut badi opportunities abhi aa rahi hai.
1: Prime Minister Narendra Modi in a social media post said this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem.